आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: से।
1: जूली देखो, हाँ मायके, नहीं तू मत मायके, मायके मत जाइयो। ए जूली,

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 9 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: अरे आज तो तुम शहर जाने वाले थे, गाड़ी छूट गई क्या?
1: छूटी नहीं, छोड़ दी। चलती गाड़ी से किसी ने खींच कर उतार दिया मुझे।
0: किसने?
1: तुमने।
0: मैंने? मैंने कैसे?
1: तुम्हारी यही पुकार कल रात मैंने सपने में सुनी थी और इसी पुकार ने चलती गाड़ी से मुझे उतार दिया। जा रहा था शहर नौकरी करने और जो काम करना नहीं चाहता था वही करने के लिए राजी हो गया।
0: कौन सा काम?
1: डोली उठाने का। अब रोज यहां आया करूंगा तुम्हारी पुकार सुनने के लिए। क्या हो गया तुमको?
0: मुझको कुछ नहीं हुआ, तुमको हो गया।
1: हा? मुझको?
0: हाँ हाँ तुमको।
1: कौन सा पागलपन देखा तुमने मुझ में? मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की?
0: पागलपन नहीं तो और क्या, दिन में मिली और रात को तुम्हारे सपने में आ गई। मैंने तो तुम्हें नहीं पुकारा था, फिर भी मेरी पुकार सुनकर चलती हुई गाड़ी से कूद गए। ऊपर से कहते हो रोज यही पुकार सुनने के लिए आया करूंगा, आखिर क्यों?
1: इसलिए कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है।
0: प्यार? बस बस रहने दो, एक बार मिलने से प्यार हो जाता है क्या?
1: यूं तो प्यार बरसों तक भी मिलने से नहीं होता, पर अगर होता है तो एक ही मुलाकात में हो जाता है।
0: अपने दिल के कोरे कागज पर कहानी मत लिखो, वरना ये परेशानी उम्र

ये कहानी नहीं है रानी, अरे प्यार है प्यार। क्या प्यार? कागज पे लिखी कहानी नहीं, जो लिख

नहीं घोड़ा। सुना क्या लड़की बोला, बात में बहुत दम है, छाती ठोक ठोक के बोला।

0: होगी मेरी दवा।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 10 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: जा जा घर तू जा जा,
1: अरे आ आ इधर तू आ आ
0: जा जा।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 नून इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: तो बर्बादी है।
1: क्या कहती हो?
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं
0: बाय बाय।
1: सुनो तो
0: मोना,
1: सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम?
0: हाँ।
1: काम सीधा साधा है, नैना एक वादा है।
0: अच्छा,

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार थीम चॉइस शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार ऑफ द वीक में सुनिए दिए गए स्टार मेहमान पर आधारित गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

हाय हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल राधे राधे दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन। आ चुका हूं लेकर आज का बहुत ही प्यारा शो है स्टार थीम चॉइस। और आज के थीम के जो शब्द हैं वह है सावन, बादल, बदरा, झड़ी, टिप टिप, बूंद, बौछार और पानी। इन शब्दों पे गाने प्ले होंगे, लेकिन सबसे पहले आप मेरी पसंद एंजॉय कीजिए। आते हैं इस गाने के बाद आप सभी के पसंद को प्ले करने।

क्योंकि मैं तेरी जिंदगी में आ गया हूँ। वैसे यहाँ बारिश हो रही है, जोरदार बारिश हो रही है। जैसे मैं घर से निकला था स्टूडियो के लिए, तो रास्ते में मुझे बारिश ने भिंगो दिया अच्छी तरह से, और स्टूडियो में आकर मेरा यानी गीला कपड़ा यानी सूख गया है। लेकिन अभी बारिश जोरों की हो रही है, बहुत जबरदस्त वाली बारिश हो रही है। तो और बहुत से दोस्त यहाँ जुड़ते जा रहे हैं, सभी का वेलकम करते हैं। जुड़ने वाले सबसे पहले आज हमसे MD महमूद आलम जी है सऊदी अरब रियाद से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। नाहिद अंसारी जी है, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम है आपका भी। और हमारे फूलाव संजू भाव जी है, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। सरफराज जी है साउथ अफ्रीका से, हमारे बहुत बहुत वेलकम है। बिट्टू कुमार जी है, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी बिट्टू कुमार जी। और यहाँ पे सर्वजीत सेठी जी ये भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है सर्वजीत सेठी जी। साथ ही साथ जुड़ने वाले ये सुनीता गोप जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और राधा कृष्ण गोप जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम है। साथ ही साथ अशोक देशमुख जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी। और ज्योति खटवड़े जी जुड़ चुकी हैं, वेलकम है आपका भी। और दिगंबर सिंह जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं दिगंबर जी। और मुबारक हुसैन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत भाई मुबारक हो, आप जुड़ गए हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और मीना इब्राहिम जी यूएस से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। मोहन नेवारे जी हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और सर्वेश भागा जी, बहुत बहुत आपका भी वेलकम करते हैं। काजल झटका जी है ये सीतामढ़ी बिहार से, बहुत बहुत वेलकम है। जाकिर खान जी जुड़ चुके हैं, सभी का वेलकम करते हैं। जितने भी दोस्त सुन रहे हैं चोरी चोरी चुपके चुपके, सभी का वेलकम वेलकम वेलकम। और आज का जो पहला गाना मैं लेने वाला हूँ, आज के थीम के शब्द एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा। आज के थीम के जो शब्द है वो है सावन, बादल और बदरा, झड़ी और टिप टिप, बूंद, बौछार और पानी। इन्हीं शब्दों पे गाने प्ले होने वाले हैं। और सबसे पहला जो गाना प्ले होने वाला है वो दिगंबर जी का है, सावन को आने दो। बिल्कुल सावन को आने दो, एंजॉय द ट्रैक दिगंबर जी। गाना सभी को डेडिकेट किया है।

और मैं एक चीज बता दूं कि आज अगर आप यानी कि लाइव शो में रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो रात के 8 बजे तक लास्ट आप भेज सकते हैं। उसके बाद अगर भेजते हैं तो शायद मैं गाना प्ले नहीं कर पाऊँ, शायद।

0: और आदरणीय जाकिर मुरानी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है इनका। और ये अगले हफ्ते का थीम लेकर आए हुए हैं, अगले हफ्ते का जो थीम ये लेकर आए हुए हैं उनके शब्द हैं वो गरजना, बरसना, चमकना, भींगना, गिरना, डूबना, उड़ना, जलना, बुझना और धड़कना। क्या बात है भाई। और फिर बैग भी आने शुरू हो चुके हैं, तो यहाँ पे शेख ताजिम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है शेख ताजिम जी। और कुंता बेनी जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। सर्वेश जगह जी क्या कहते हैं, सुन लेते हैं।
1: आरजे अमन सर जी,
0: जी जी,
1: शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। दिगंबर जी अपने गाने में शामिल किए, उनको धन्यवाद देते हैं। आपका भी ओपनिंग सॉन्ग बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।
0: ओके जी, धन्यवाद देते हैं। मोहन भाई लिखते हैं कि दिगंबर जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू सो मच। एंड प्रमोद कुमार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है, लिखते हैं कि दिगंबर जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू दिगंबर जी। बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन फरमाइश है, ओके जी। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा ये नगमा है, धन्यवाद देते हैं। और राम कुमार मिस्त्री जी लिखते हैं कि नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मजा आ गया पहले ही गाना सुनकर। और गजानंद जी लिखते हैं कि दिगंबर जी का गाना मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। इसी बात पर जो अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो है हमारे ये गजानंद जी का जो ग्रुप है उनका ग्रुप का ये गाना है, और उसमें शामिल हो रहे हैं राधा कृष्ण गोप जी। ओके जी, तो हमारे गजानंद जी का ग्रुप और राधा कृष्ण गोप जी की जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ। और लेकिन यहाँ पे संजू भाव का ऑडियो सुन लेता हूँ भाई, संजू भाव क्या कहते हैं, इनका थोड़ा सा ही ऑडियो सुनूंगा मैं, ज्यादा नहीं क्योंकि बहुत लंबा भेजते हैं।
2: रेडियो हॉटस्टार, रेडियो हॉटस्टार सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आरजे अमन सर जी, आपको भी हमारा दिल से प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार
2: अमन सर जी, कैसन
0: बानी? बढ़िया बानी, रोड़ा पति कैसन बानी?
2: ओके अमन सर जी, हम भी बहुत ही बढ़िया बानी।
0: अच्छा
2: अमन सर जी, मैं फुले भक्त संजू भाऊ बोदवड़ महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। आज है गुरुवार और आज की अपनी थीम है स्टार थीम चॉइस। तो आज के कार्यक्रम में सावन, बादल, बदरा, झड़ी, टिप टिप, बूंद, बौछार और पानी, यह प्यारे प्यारे शीर्षक दिए गए सर। तो हमने भी सावन और बदरा यह दो शीर्षक चुन के एक गीत चुना है सर। फिल्म का नाम है आया सावन झुमके और यह फिल्म 1969 में रिलीज हुई थी। आप हमें इसी फिल्म का एक गीत सुना दीजिए जिसे आवाजें दिए हैं स्वर्गीय मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जी इन्होंने। और गीत के बोल सर इस प्रकार हैं। बदरा छाए के झूले पड़ गए, हाय के मेले लग गए, मच गई धूम रे कि आया सावन।
0: बिल्कुल आया सावन झूम के, और ये गाने एंजॉय कीजिए, सुनते रहे रेडियो हॉटस्टार जो दीवारा बना दे। एंजॉय द ट्रैक।

0: बिल्कुल सावन झूम के आ गया है और बादल भी छाए हुए हैं, बारिश भी हो रही है। वैसे अभी सावन आने में थोड़ा सा समय बाकी है, लेकिन यहाँ पे आ चुके हैं सावन रेडियो हॉटस्टार पे और एमडी राजा जी जुड़ चुके हैं। वेलकम है एमडी राजा जी, लिखते हैं कि अच्छा देखते हैं और ये जुड़ चुके हैं यहाँ पे। सैयद यूनुस जी बहुत बहुत वेलकम है, लिखते हैं कि सैयद दिगंबर जी गाना उनको बहुत अच्छा लगा है, थैंक यू सो मच। दिगंबर जी लिखते हैं, क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: हेलो अमन सर जी, आपने हमारा सॉन्ग प्ले किया, आज तो शुरू में ही स्टार्ट में ही ले लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दोस्तों ने हमारे में प्यारे प्यारे अच्छे फीडबैक दिए, उनके लिए सभी को दिल से धन्यवाद।
0: जैसा गाना होता है मुझे उसको वहाँ स्थान देना पड़ता है। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप समझते होंगे। और अनिल कश्यप जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है करते हैं। और साथ ही साथ रविंदर गोरखपुरी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है रविंदर गोरखपुरी जी, गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। और संजय साहनी जी जुड़ चुके हैं, बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय अमर सर जी को प्यार भरा नमस्कार, हम सभी साथियों को प्ले गाना को प्ले करने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि रेस्पेक्टेड दोस्त गजानंद जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और ये फीडबैक
2: आरजे अमन सर जी, गजानंद सुलोकर जी, फूले बख्श संजू भाव जी और राधा कृष्ण गोप जी और पूरा ग्रुप का भाई गाने में शामिल किए, सभी को भी धन्यवाद देते हैं जी।
0: ओके जी, थैंक यू सो मच आपका भी। और नंदलाल जी जुड़ चुके हैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। मोहन निवारी जी लिखते हैं कि हमारे ग्रुप की फरमाइश को प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं थैंक यू अमन जी, आपने मेरा गाना बजा दिया। राजेश कुमार लिखते हैं कि सुपरहिट सॉन्ग सुनने को मिल रहा है। और संध्या पटेल जी जुड़ चुके हैं, वेलकम, लिखते हैं कि मजा आ गया सुन के गाने को। और बिट्टू कुमार जी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन सुपरहिट गाना है। और कुंता जी लिखते हैं कि फूले बख्श संजू भाव जी गजानंद जी के ग्रुप की जो पसंद है वह बहुत ही प्यारी पसंद है। अगली पसंद अशोक देशमुख जी का ग्रुप।

0: वेलकम बैक। और एक्चुअली क्या है कि कुछ टेक्निकल इशू आ रहे हैं क्योंकि बिजली जोड़ों की यहाँ पे गरज रही है और चमक रही है, उसके चलते नेट इशू हो रहा है, इसके लिए आई एम सॉरी। और लेकिन अगला जो मैं गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो है अशोक देशमुख जी का जो ग्रुप है उनका है, क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार।
1: मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: वेलकम जी।
1: आज है स्टार थीम चॉइस, तो मुझे एक गीत सुनना है। फिल्म का नाम है साजन का घर।
0: अच्छा।
1: और गाने का बोल है, सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहे की फूल खिले। ये गीत सबसे पहले मैं आपको और आपकी सुंदरता की मूर्त को और जितने भी हॉटस्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर। धन्यवाद।
0: सर्वेश भगत जी।
2: आरजे अमर सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी।
2: आज हमारा फरमाइश का फिल्म है साजन का घर, गाने का बोला सावन आए बादल छाए, हॉट स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजरत अंदाहा जिला वैशाली बिहार से बोले। हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, वर्ष किशोर भगत, आनंद शेखर, सन कुमार, सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख भाई जी, आत्माराम पाटिल जी, आर जे अमन सर जी, सुंदरता की मूरत जी, आर जे रत्ना जी, आर जे वंशिका जी, आर जे एम एस परमार जी, और सभी आर जे, और सभी भाई, और सभी बहन, और सभी लिसनर इसमें शामिल है, सबको सुनर जी का जयराम जी की।
0: ओके जी। और इसी गाने में जैसे कि मैं आपको बता दूं कि शामिल है हमारे सैयद यूनुस जी भी, तो उनका भी वेलकम करते हैं इस गाने में। और आत्माराम पाटिल जी, आप सभी यानी कि चारों दोस्तों की मिली जुली फरमाइश है, सावन आया बादल छाए, इंजॉय द ट्रैक।

0: बिल्कुल सावन आ गया है, बादल छा गए हैं और बुलबुल भी चहक रही हैं, फूल भी खिल गए हैं। वैसे फीडबैक भी आ गए मेरे पास। एमडी राजा जी लिखते हैं कि भाई आपको इंतजार करना पड़ेगा। ओके नंदनी माजी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है ये बिल्कुल। और मोहन वाले जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद है ये। और गजानंद जी लिखते हैं कि अशोक देशमुख जी, सरोज भगत जी, आत्माराम जी, अक्षय दुन जी सभी के पसंद बहुत ही शानदार लगी है। नाहिद जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों की मिलकर फरमाइश शानदार, थैंक यू सो मच। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि ये सभी दोस्तों का डिमांड बहुत ही अच्छा लगा। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: आरजे अमर सर जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा फरमाइश और अशोक भाई जी और आत्माराम पाटिल जी, सैयद यूनिस जी सभी भाई का मिली जुली फरमाइश आप शामिल कर दिए, लाख लाख धन्यवाद, थैंक यू सर।
0: ओके धन्यवाद देते हैं आपको भी। और जितेंद्र जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम। लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग चल रहा है। मीना कुमारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि अशोक देशमुख जी, सरोज भगत जी सभी की पसंद शानदार। और ये फीडबैक,
2: थैंक यू आर जे अमन सर जी, हमारा गीत प्ले करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं सैयद यूनुस सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार, जो दीवाना बना दे। थैंक यू आर जे अमन सर जी,
0: वेलकम जी। और कुंता बेन जी लिखते हैं कि चारों दोस्तों की मेरी फरमाइश बहुत अच्छी लगी। आप चार नहीं, इसमें ये पांच दोस्त शामिल हो गए, पांच। नाजिम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं नाजिम जी। और नंदलाल जी लिखते हैं अशोक देशमुख जी के गुरु की फरमाइश मुझे बहुत अच्छी लगी है, थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो डिमांड है, बीके पंत जी का, सावन का महीना आया, एंजॉय कीजिए बीके पंत जी।

जी बरसात हो रही है, बहुत ज्यादा बरसात हो रही है। और संजय सानी जी लिखते हैं कि एक से बढ़कर एक गानों की डिमांड आई हुई है और झड़ी सी लगी हुई है, बिल्कुल झड़ी लगी हुई है भाई। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि जो दिल के करीब होते हैं वही अक्सर समझ नहीं पाते हैं कि वह कितने खास है। और यानी वक्त कहता है कि ठहर जा, दिल कहता है कि चल पड़, और जिंदगी बस यही इसी खिंचाव तनाव में बीत जाती है, बिल्कुल। और नाजिन के लिखते हैं कि सर्वेश जी अशोक जैसे मुझे सभी दोस्तों की मिली जुली फरमाइश बहुत अच्छी लगी है। जितेंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन गीत। और दिलीप कुमार जी जुड़ चुके हैं कोलकाता से, वेलकम है आपका भी। नाही जी लिखते हैं कि सुपर चॉइस, बीके पंत जी आपकी। और मोहन भाई लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। अगला जो डिमांड है दो दोस्तों की है और उसमें जाकिर खान जी है और जाकिर खान जी के साथ साथ है यानी प्रकाश धोनी जी। तो प्रकाश धोनी जी और जाकिर खान जी, इंजॉय द ट्रैक, सावन के बादलों की नियत खराब है।

0: बिल्कुल नियत खराब है भाई, बहुत ही ज्यादा खराब है नियत, और इसलिए तो बारिश हो रही है जबरदस्त। अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि सर लग रहा है कि आज बारिश हो रही है यहाँ पे, लगातार बारिश हो रही है, ये फीडबैक सुनते हैं।
1: धन्यवाद अमन सर, आपने हमारी फरमाइश का गीत सुनवाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा गीत सुनकर सभी श्रोताओं ने फीडबैक दिए, उन सबको भी धन्यवाद देते हैं। मैं निंदोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे गजानन जी लिखते हैं कि सावन का महीना आया, ये भी गाना बेहतरीन लगा है। और एमबी नाजिम जी लिखते हैं ऑसम सॉन्ग सुनने को मिल रहा है। और कुंता मैंने लिखते हैं कि बीके पंजी का गाना और सभी दोस्तों की मिलजुली फरमाइश बहुत अच्छी लगी है। मंगेश दसमुख जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही ये प्यारा नगमा है, ये क्या कहते हैं, सुन लेते हैं इनकी भी।
2: अजय अमन सर जी, जाकिर खान जी, प्रकाश धोने जी, दोनों भाई का मिलजुली फरमाइश में शामिल किए, दोनों भाई को धन्यवाद देते हैं जी।
0: ओके जी, और यहाँ मोहन वाल जी लिखते हैं कि कार्यक्रम शानदार चल रहा है। इसी बात का अगला जो डिमांड है वो बिट्टू कुमार जी का है, फिल्म यानी कि प्यार, यानी पहला पहला प्यार का वो नगमा सुनना चाहते हैं और सभी दोस्तों को डेडिकेट भी करना चाहते हैं। तो एंजॉय कीजिए बिट्टू कुमार जी।

0: बिल्कुल बहुत मुश्किल है भाई, सावन का महीना है और आदमी ना भींगे तो मजा ही कैसे आएगा। वैसे फीडबैक जाए हुए नए चीज लिखते हैं कि मैं तेरा इंतखाब हूँ, मुझे यूं आजमाया ना कर। लिखती है कि मैं तेरा इंतखाब हूँ, मुझे यूं आजमाया ना कर, दिल में बसा लिया है तो फिर मुझे अपना पराया ना कर। और साथ चलेंगे हर मोड़ पर मुस्कुराते हुए, मेरी मोहब्बत को कभी तुम तना छोड़ के जाया ना कर। अच्छा जी, और ये क्या कहते हैं, सुन लेते हैं।
1: गुड इवनिंग अमन सर जी, अमन सर जी मैं फुले भक्त संजू भाऊ। अब तक चले फरमाइश में, जैसे कि अभी फरमाइश चल रही है वीके पंत जी, इनके फरमाइश का गीत सीधे दिल को छू गया, उनको मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा इतना अच्छा गीत सुनवाने के लिए। और इनके पहले आपने हमारे आदरणीय अशोक देशमुख जी, सर्वेश भगत जी, आत्माराम पाटिल जी और हमारे मित्र सईद इनू जी, जो बहुत दिनों के बाद आज हॉटस्टार पाया है सर, उन चारों दोस्तों की आपने जो मिलीजुली फरमाई चलाई सर, मजा आ गया। इनका गीत भी सर काबिले तारीफ रहा, दिल को छू गया। और उनके पहले आपने हमारे ग्रुप फरमाई चलाई सर, तो आपको मैं दिल से शुक्रिया बोलना चाहूँगा, आपने हमारे ग्रुप फरमाइश चलाई। और हमारे ग्रुप फरमाइश के पहले आपने दिगंबर सिंह जी, इनकी फरमाइश चलाई सर, तो उनका गीत भी सर एकदम लल्लनटाप रहा। और आज के कार्यक्रम का आपने जो ओपनिंग गीत आगाज किया है सर कार्यक्रम का, मजा आ गया सर। जाहिर बात है सर आज का कार्यक्रम भी लल्लनटाप होने वाला है, क्योंकि आज जो थीम दी गई है सर, इस थीम पर सबसे भी प्यारे प्यारे गीत है और गीतों की बारिश में हम तुरंत भीग चुके हैं सर। आपको मैं धन्यवाद बोलूंगा और स्पेशल धन्यवाद बोलूंगा जाकिर मलानी जी को, इन्होंने इतना अच्छा थीम दिया सर। रेडियो ऑटो स्टार जो दीवाना बना रहा है, अमन जी के साथ सभी को शुक्रिया, जय हिंद।
0: धन्यवाद आपका भी। और यहाँ पे जितेंद्र जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग चल रहा है, मजा आ रहा है। गजानंद जी लिखते हैं कि इस सावन का महीना वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। बिट्टू कुमार जी, बिट्टू जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी। और मोहन भाई लिखते हैं सुपेट पसंद के लिए थैंक यू सो मच। एंड सुनील कुमार लिखते हैं कि अमन जी हम भी जुड़ गए जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। नाजिम जी लिखते हैं कि ऑसम सॉन्ग सुनने को मिला है। और जागीर खान जी लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी गाना प्ले करने के लिए। कुंता जी लिखते हैं कि बिट्टू जी की पसंद मुझे बहुत पसंद है, इसी बात पर अगला जो पसंद है वो ही भी बहुत ही प्यारा है। और इस पसंद को लेकर आए हुए कौन साहब जैसा मैं बताऊंगा।
2: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार थीम चॉइस शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार ऑफ द वीक में सुनिए दिए गए स्टार मेहमान पर आधारित गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
0: वेलकम बैक। और इसी बात पर जो अगला जो गाने की डिमांड आई है, हमारे दोस्त जिनका नाम है यानी कि संजय साहनी जी, और सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया।

बिल्कुल, मैं परदेसी घर वापस आया, वैसे फीडबैक भी आ गया। दत्तक जी जुड़ चुके हैं, बहुत वेलकम करते हैं दत्तक कलम जी। और यहाँ पे जुड़ चुके एस खानम जी, बहुत बहुत वेलकम है, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका भी। और आरिफ सिंधी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम सलाम, वेलकम करते हैं आपका भी। मोहन वाले जी लिखते हैं कि सावन के झूले वाला गाना मुझे अच्छा लगा। जागीर खान लिखते हैं कि बातों से कह दो जरा सोच समझ कर बरसे, अगर मुझे उनकी याद आ गई तो मुकाबला बराबरी का होगा। अच्छा जी। और वीरेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं वीरेंद्र सिंह जी। इसी बात पर अगला जो नगमा है उसका डिमांड है हमारे आरजे सोनी जी का। आरजे सोनी जी सुनना चाहती हैं आज के थीम पर भोजपुरी नगमा। एंजॉय कीजिए आरजे सोनी जी, और सभी दोस्तों के लिए डेडिकेट है।

0: अरे मुश्किल मेरा लगे कोनो काम नहीं के जी हम बानी नू और वैसे फीडबैक बहुत सारे आ चुके हैं। कुंदा जी लिखते हैं अमन जी सावन के गीत लाजवाब सुपर हिट चल रहा है, मजा आ रहा है सुन सुन के। और यहाँ पे वीरेंद्र सिंह जी लिखते हैं कि बहुत अच्छा भोजपुरी गाना लागल बा। अच्छा नंदलाल जी का कहते हैं सुन लिया
1: अमन सर सोनी जी का गाना तो बहुत लाजवाब लागल, पसंद करे खातिर इनके बहुत बहुत धन्यवाद। हम नंदलाल यादव गाजीपुर यूपी से।
0: जी जी बहुत बहुत वेलकम बार। और भी और यहाँ पे नंदनी माजी जुड़ती यहाँ पे लिखते भोजपुरी गीत बात बहुत अच्छा लागल बा। अच्छा और यहाँ पे गजानंद जी क्या नाम है जितेंद्र जी लिखते हैं कि ये भी गाना मुझे बहुत पसंद है, लाजवाब गाना के लिए धन्यवाद देते हैं सोनी जी को। राधा कृष्ण गोपी देंगे वाह शानदार पसंद के लिए थैंक यू सो मच आरजी सोनी जी। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो है अभिषेक तिवारी जी का। अभिषेक तिवारी जी सुनना चाहते हैं सावन में लग गई आग, एंजॉय कीजिए।
2: दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: ज्योति दिलीप सिंह के सभी आज के सभी गाने लाजवाब चल रहे हैं। थैंक यू सो मच और ये फिर बैक।
1: नमस्ते अमन सर जी।
0: नमस्ते।
1: और आरजे सोनी जी का जो गाना था इस थीम के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा था, और उनके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो डरने की कोई बात नहीं है, सावन बरसे या फिर कुछ भी हो, जब मिलन होना होगा तो हो ही जाएगा
0: बिल्कुल।
1: और थैंक्स, बहुत अच्छा लगा ये गाना।
0: बिल्कुल, ये तो गाना था ही बेहतरीन। बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन गाना चल रहा है अमन सर जी, और मजा आ रहा है। जितेंद्र जी लिखते हैं कि झक्कास फरमाइश, वाह मजा आ गया। और वीरेंद्र जी लिखते हैं कि ये सावन में लग गई आग, वाह मजा आ गया इस गाने को सुनकर। और इसी बात पर अगला जो गाना आया हुआ है जितेंद्र सिंह जी का है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। इंजॉय द ट्रैक चांदनी का।

ओके जी, फिलहाल मैं फीडबैक बाद में शामिल करूंगा, लेकिन दो दोस्तों का जो गाना है, एक अनिल मेहता जी का और एक और साहब है, क्या नाम है उनका, मैं बताता हूँ आपको। और एक ये हमारे यानी रविंदर जी का, रविंदर गोरखपुर जी का, दोनों दोस्तों की पसंद है कि सावन का महीना, ये पवन करे शोर।

बिल्कुल सावन का महीना, पवन करे शोर और जेरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। वैसे फीडबैक भी आए हुए मेरे पास। जितेंद्र जी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया मंजी गाना प्ले करने के लिए। और हुकुम जान जी जुड़ चुके हैं यहाँ पे कोटा राजस्थान से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और नाहिद जी लिखते हैं कि कुछ ऐसे ही दिन थे जब हम मिले थे और नजरों से नजरें चुपके से मिली थी, आज भी वही मौसम है तेरी याद दिलाता है और लगता है जैसे मोहब्बत आज ही शुरू हुई थी। अच्छा सच में। और यहाँ पे कुंता बेनी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत फरमाइश है ये, बिल्कुल। और अकबर खान जी जुड़ चुके हैं, वेलकम सलाम, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। वीरेंद्र जी लिखते हैं कि ये सावन का महीना पवन करे सुर वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके जी। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन ये डिमांड है, थैंक यू सो मच। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि सावन का मनभावन होता है, महीना बहुत मनभावन होता है। जी बिल्कुल। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, ये लाजवाब सॉन्ग सुनने को मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी बात पे अगला जो डिमांड है वो हमारे दत्तक्रम जी का है, सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहते हैं, सुनवा दिया।

वेलकम बैक और फीडबैक आए हुए हैं मेरे पास और कपूतन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही सुपरहिट डिमांड है और सर्वजीत जी लिखते हैं कि आशा मूवी का ये खूबसूरत ओल्ड इज गोल्ड नगमा मजा आ गया। इसी बात पर अगला जो डिमांड है ज्योति खटबड़े जी का है। ज्योति जी हमेशा की तरह सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहती है, तो ज्योति जी एंजॉय कीजिए अपने इस प्यारे से नगमे को।

वेलकम बैक। और मेरे पास दत्ता जी का मैसेज है कि धन्यवाद अमित जी, आपने मेरा गाना प्ले किया। और सर्वजीत सेठी जी लिखते हैं कि लवली सॉन्ग है। और ज्योति खंडोली जी का मैसेज है कि थैंक यू अमन जी, आपने मेरा गाना सुनवा दिया, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। और सॉन्ग को पसंद करने वाले दोस्तों का भी शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। अमीना खान जी जुड़ चुकी है, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी सावन के इस प्रोग्राम में, बहुत बहुत वेलकम करते हैं अमीना खान जी, आइए, आपका इंतजार था। और मोहन निवार जी जुड़ चुके हैं, सॉरी, देखते हैं कि सरदार पसंद है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, वैसे अगला जो डिमांड है वो भी बहुत ही प्यारा है, जिसे दो दोस्त सुनना चाहते हैं। एक है हमारे आरिफ सिंधी जी, आरिफ सिंधी जी के साथ साथ इसी गाने को यहाँ सुनना चाहती है आरती तिवारी जी। तो दोनों दोस्तों की पसंद पे बादल यूं गरजता है, बिल्कुल एंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक और फीडबैक मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं, तो कुछ शामिल कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ज्योति जी लिखते हैं कि ये दोनों दोस्तों की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई, लाजवाब लगी है, थैंक यू सो मच। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि बादल यूं गरजता है, नाइस सॉन्ग सुनने को मिला है। इसी बात पर आर्य सिंह जी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया, ओके जी। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि सुपर फरमाइश। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन फरमाइश है जी। और अकबर खान जी लिखते हैं कि वाह क्या गाना है, सुपर से भी ऊपर, बादल यूं गरजता है। इसी बात पर अगला जो नगमा है उसे लेकर आई है काजल झक्का जी, सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहती है, सीतामढ़ी बिहार से। एंजॉय कीजिए काजल झक्का जी, और ये गाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्यारा गाना है ये।

0: बिल्कुल बिना मौसम के बदला बरस गए हो, अनजाने में मनवा बहक गए हो। बहुत ही प्यारा गाना लगा है और यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि काजल जी के पसंद बहुत बेहतरीन, मजा आ गया सुन के इस गाने को। आरती तिवारी जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा भी गाना प्ले करने के लिए। और सर्वेज भगत जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: अजय अमन सर जी, काजल झा जी अपने गाने में शामिल किए हैं और सभी भाई और बहन अपने अपने गाने में शामिल करते हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और यहाँ पे अनिल कश्यप जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
2: गाना के 100 में 100 नंबर देम हम, लेकिन बिना मौसम के बदरा ये थोड़ा चीज अच्छा नहीं के। मौसम में जैसन बैसन के बरसात होता है, लेकिन चलिए ठीक बा प्रोग्राम हा।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन भोजपुरी गाने की डिमांड थी, मजा गया इस गाने को सुनकर। और मोहन वाले जी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन भोजपुरी गाना सुनने को मिला है, मजा आएगा। नाहिद जी लिखते हैं कि पहली मोहब्बत का एहसास भी क्या अजीब होता है, हर लम्हा दिल के बेहद करीब होता है, बिना कहे ही जो सब कुछ कह जाए, ऐसा हम सफर ही सबसे खुश नसीब होता है। जी काश हम भी वो खुश नसीब होते। आरिफ सिंह जी लिखते हैं कि ये पवन सिंह जी और साधना संगम की आवाज में बहुत ही लाजवाब भोजपुरी गाना सुनने को मिला, मजा आया। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार ये डिमांड। और यहाँ पे मीना जी लिखते हैं बहुत खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत गाना सुनने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। इसी बात पे अगला जो डिमांड है हमारे MD यानी राजा जी, MD राजा मोहम्मद राजा जी का गाना है टिप टिप बरसा पानी, बिल्कुल। और इसी गाने में मैं शामिल करूंगा। ओके, एंजॉय कीजिए।

बिल्कुल, मैं क्या करूं भाई। वैसे मोहन हमारे जी लिखते हैं कि लाजवाब ये भी गाना सुनने को मिला है मुझे। संतोष गौंड जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है संतोष गौंड जी। लिखते हैं कि कार्यक्रम शानदार चल रहा है। बीटू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन नगमा है ये। और अजय कुश जी जुड़े हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं अजय कुश जी। और रविंद्र गोरखपुर जी लिखते हैं कि टिप टिप बरसा पानी, मजा आ गया सुन के गाने को। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, थैंक यू सो मच। और ज्योति जी लिखते हैं कि लाजवाब गाने की फरमाइश। ओके, इसी बात पर अगला जो डिमांड है अमीना खान जी का है। अमीना खान जी, इंजॉय द ट्रैक, देखो ना।

वेलकम बैक और बिट्टू को मालिक देंगे बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग, दिल को सुकून देने वाला ये गाना, ज्योति जी लिख देगी अमीना जी के पसंद, सुपर लाजवाब, थैंक यू सो मच। एंड अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि हम सुन रहे हैं देखो ना, लेकिन ये गीत कमाल का है जी, बिल्कुल बहुत ही कमाल का है। वैसे अगला जो गाना भी प्ले होने वाला है वो भी कमाल ही का है, जिसे लेकर आए हुए हैं अजय कुछ जी। और अजय कुछ जी, इंजॉय कीजिए अपने गाने को।

वेलकम बैक और बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं। ओ माय गॉड, कौन सा चीज लेते हैं कि अभी तक जितनी भी फरमाइशें चली हैं, अमन सर जी बहुत ही शानदार लाजवाब, थैंक यू सो मच सभी दोस्तों को। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन ये नगमा है, थैंक यू सो मच फॉर। एंड अजय कुछ लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी गाना बजाने के लिए, और श्रोताओं को भी धन्यवाद देते हैं गाने को पसंद करके फीडबैक देने के लिए हम। और अच्छा ओके मैं समझ गया ओके। और यहाँ पे मोहन निवारी जी लिखते हैं कि बहुत ही सुपरहिट पसंद है, अच्छा जी। और मीना जी लिखते हैं कि वाह वाह वाह क्या पसंद है। रविंद्र गोरखपुरी जी लिखते हैं कि ये गीत मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। और नाहिद जी लिखते हैं कि ये सभी दोस्तों की पसंद सुपरहिट चल रही है, लाजवाब चल रही है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद देते हैं। और ज्योति जी लिखते हैं कि लाजवाब लाजवाब लाजवाब पसंद। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि ये आरजू थी कि हम उसके साथ चले, ये आरजू थी कि हम उसके साथ चले, मगर वो शख्स तो रास्ता बदल दिया, और शायद इसलिए कि बरसात में उसका चप्पल ना टूट जाए। अच्छा क्या बात है। और शेख यहाँ पे ताजिन जी लिखते हैं कि थैंक यू अमन सर जी, आपने मेरा सबसे यानी कि पसंदीदा गाना बजा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप थैंक यू उनको बोलिए जिन्होंने इस गाने को डिमांड किया है। और यहाँ पे अमीना खान जी लेते हैं कि सारे सॉन्ग सुन के मूड फ्रेश हो जा रहा है, जी बिल्कुल। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे सर्वजीत सेठी जी का है, और मैं तेरे प्यार में पागल, सच में मैं पागल हुई हूँ, इंजॉय कीजिए। और कभी कभी यहाँ पे नेटवर्क डिस्टर्ब चल रहा है, इसलिए बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहा है।

गाना मुझे प्ले करना था, मैं भूल गया अभी, यानी कि यहाँ पे सुनीता गोप जी का गाना मुझे प्ले करना था, मैं मेरे दिमाग से निकल गया। ओ माय गॉड, मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ।

पागल पागल पागल बहुत पागल हुए। और बिट्टू कुमार जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना चल रहा है। ओके जी। और काजल झका जी लिखते हैं थैंक यू सो मच, आपने गाना बजा दिया दोस्तों का भी शुक्रिया, थैंक यू सो मच फीडबैक देने के लिए। और ओके, और यहाँ पे मिलन जी लिखते वाओ वाओ वाओ बहुत ही प्यारी पसंद है, थैंक यू सो मच। जितेंद्र जी लिखते हैं सुपर से भी ऊपर पसंद है। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही शानदार फरमाइश, धन्यवाद देते हैं। और नाही जी लिखते वाह बहुत खूबसूरत फरमाइश के लिए, थैंक यू सो मच सरबजीत शेट्टी जी। इसी बात अगला जो डिमांड है वो सुनीता गोप जी का है, जरा भूल गया था एक गाना और पहले प्ले करना था लेकिन मैं भूल गया था, सॉरी। लेकिन कोई बात नहीं, देर आया दुरुस्त आया, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: और यहाँ पे सुनीता गोपी जी लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया। और ओके जी, और यहाँ पे जितेंद्र जी लिखते हैं नाइस सॉन्ग जी, और यहाँ पे राधा कृष्ण गोप लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना, लिखते धन्यवाद देते हैं उनको। बीटू कुमार लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत फरमाइश। ओके जी, और सर्वजीत जी
1: धन्यवाद, अमन सर जी आपने मेरा गीत चलाया और जिन्होंने मेरे गाने पर फीडबैक किया उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सभी गीत एक से बढ़कर एक चल रहे हैं, तो सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो सबको दीवाना बना दे। मैं सरवजीत सेठी फाजिलका पंजाब से।
0: धन्यवाद जी आपका भी। और मीना जी ने तो वाह वाह वाह बहुत ही प्यारा नगमा, बहुत खूबसूरत नगमा। रविंदर गोरखपुरी जी लिखते हैं कि एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट सॉन्ग है, ब्यूटीफुल सॉन्ग है, दिल झूम उठा। बहुत बहुत थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। और इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो हमारे यानी कि प्रमोद कुमार जी का है, और प्रमोद कुमार जी हमेशा की तरह सभी को डेडिकेट करते हैं। सुनवा दिया।

और ये गाना मैं पहली बार सुना हूँ, मुझे अच्छा लगा। वैसे आप सबको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और फिर रेग भी आया हुआ है, नाजिम जी लिखेंगे, ऑसम ऑसम सॉन्ग है ओके। और जितेंद्र जी लिखते भाई प्रमोद जी का गाना मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच प्रमोद जी। नाही जी लिखते वाओ सुपर डिमांड के लिए, थैंक यू सो मच प्रमोद जी। और बिट्टू कुमार जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा पसंद है जी। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वह हमारे अनिल कश्यप जी का है, छोटपुर सिवान से सुनना चाहते हैं भोजपुरी गाना पवन सिंह की आवाज में, तो एंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक और फीडबैक भी आ गया मेरे पास। ज्योति जी लिखते हैं ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पसंद है। और यहाँ पे कुंता जी लिखते हैं कि सुपर फरमाइश भाई मजा आ गया प्रमोद जी आपका गाना को सुनकर। मीना जी लिखते हैं वाह क्या बात है बहुत ही प्यारा गाना मैंने भी पहली बार सुना है पीएन प्रमोद जी का गाना। बिट्टू कुमार लिखते हैं शानदार फरमाइश चल रही है। और नाही जी लिखते हैं वाह क्या पसंद है थैंक यू सो मच हर टचिंग सॉन्ग के लिए। और राधा कृष्ण को भी भोजपुरी गाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा धन्यवाद देते हैं। और मैं बता दूं कि अगला जो डिमांड है वो डिमांड है हमारे यानी नाम है उनका नाम है प्रिंस पासवान जी। और प्रिंस पासवान जी एंजॉय कीजिए बादल पे चलते हैं।

बिल्कुल बादल पे चल गया। वैसे फीडबैक भी मेरे पास आए हुए हैं। बिट्टू कुमार लिखते हैं बहुत ही लाजवाब गाना है ये। जी बिल्कुल। और मीना जी वाह वाह वाह क्या लाजवाब पसंद चल रहा है। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मेरी नंदनी मालिक से की आज के सभी गाने बहुत प्यारे प्यारे हैं। जी अगला गाना भी सुनिए, ये भी बहुत प्यारा लगेगा, जिसे देखा है शाहिद अंसारी जी। शाहिद अंसारी जी एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल ये मौसम, ये बादल, तेरी खुशबू करे मुझे पागल और दीवाना तो बना ही दिया है। और यहाँ पे कुंदा जी देते हैं वेरी नाइस सॉन्ग भाई प्रिंस पासवान जी का, मजा आ गया सुनकर। और जुड़ चुके हैं यहाँ पे यानी प्रियंका जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं प्रियंका जी, और बहुत सही समय पे आई क्योंकि अगला गाना आप ही का आने वाला है। ये फीडबैक सुनते हैं।
1: तन जा जाए बदरा तू चल जा, तू जाके बदरदी से कहिया। आरजे अमन सर जी आपने मेरा गाना प्ले किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोगों ने मेरे गाने के लिए तारीफ किया उन सभी को दिल से धन्यवाद है। और कहा भी गया है कि किसका प्यार यहाँ पूरा होता है, प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा होता है। थैंक यू सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्या करें। और यानी कि काश काश काश मैं तो सिर्फ इन्हें काश ही कर पाऊंगा। ठीक है पंजी, देते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। सभी दोस्तों का धन्यवाद देते हैं फीडबैक देने के लिए। बीटू कुमार लिखते हैं कि ये भी गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। ओके, और आरिफ हिंदी जी लिखते हैं कि नहीं अभी तो नहीं था, जी का डिमांड आना बाकी है अभी। ओके, और राधा कृष्ण को देते हैं बहुत ही खूबसूरत पसंद है। ये जो था डिमांड, ये था शाहिद अंसारी जी का। शाहिद अंसारी जी ने इस गाने को डिमांड किया था। वैसे अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो हमारे ये निक्की प्रियंका जी हैं और उनके साथ साथ हैं नीलेश वीरोकार जी, दोनों की एक ही पसंद है। इंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक। और नाजिन जी लिखते हैं कि ऑसम चॉइस है बिल्कुल। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि शानदार पसंद है, थैंक यू सो मच। और प्रकाश दोनों जी लिखते हैं कि लाजवाब गाना है, आज के सभी श्रोताओं के पसंद बहुत लाजवाब है, थैंक यू सो मच। मीना जी लिखते हैं कि वाह क्या लाजवाब पसंद है। और अमीना खान जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। ओके जी। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि धन्यवाद देते हैं सर जी इस गाने के लिए भी। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद है। ओके जी। और आत्माराम जी लिखते हैं कि यानी कि प्रियंका जी और साथ ही हमारे नीलेश विरोकार जी के पसंद मुझे वंडरफुल लगी है, थैंक यू सो मच। अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि आग लगाई, वाह आग लगना भी चाहिए। और अजय कुछ लिखते हैं कि हिट सॉन्ग सुनने को मिल गया, मजा आ गया है। कुंता जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल फरमाइश के लिए, थैंक यू सो मच। इसके बाद अगला जो डिमांड है इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ किन के पास, जरा सा मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, ये नाहिद जी के पसंद है। और नाहिद जी इंजॉय कीजिए इस गाने को और सभी दोस्तों को डेडिकेट कर रही है।

अभी महर्षि जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और ओके ओके और ओके जी, और यहाँ पे अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि आरजे अमन जी आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार चल रहा है, झक्का चल रहा है, मजा आ रहा है। और अमीना खान जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद जी चल रहा है, थैंक यू सो मच। एंड नाजिम जी लिखते हैं कि ऑसम सॉन्ग है नाहिद जी आपका। और ज्योति जी लिखते हैं कि नाहिद जी के पसंद मुझे बहुत ही लाजवाब लगी है, थैंक यू सो मच। और कुत्ता बेनी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत फरमाइश है, थैंक यू सो मच नाहिद जी। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर नगमा है। और मीना जी लिखते हैं कि वाह बहुत ही हार्ट टचिंग सॉन्ग है, थैंक यू सो मच। और नाहिद जी लिखते हैं कि मांग लूं तुम्हें खुदा से एक मन्नत की तरह, और सजा लूं अपने दिल में एक जन्नत की तरह, और कभी ना आए हमारी जिंदगी में कोई जुदाई, और मैं तुम चाहूं उम्र भर एक इबादत की तरह। वाह क्या बात है। ओके जी, अगली जो पसंद है इसी बात पर मैं सुनवा रहा हूं।

बिल्कुल बरस जाए, बादल बरस जाए, लेकिन अगला जो गाना मैं प्ले करूंगा, लेकिन फीडबैक भी मेरे पास आया, शामिल करूंगा। विजय राजी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है विजय राजी। लिखते हैं सर जी नमस्ते, और हमारे रेडियो सुनने वाले सभी मेरे प्यारे प्यारे साथियों को भी प्यार भरा नमस्कार है, और हमारी प्यारी सी बीबी के लिए हमारा भी नमस्कार है, और ये निक्की प्रियंका जी का भी, उनका भी वाह सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और अजय कुछ सभी गाने सदाबहार है, मजा आ रहा है जी। और एस खानम जी लिखते हैं कि बहुत ही ये प्यारा सॉन्ग है, अब किस सॉन्ग के बारे में बात करें जरा मुझे बताइएगा। अच्छा शायद मेरे ख्याल से वो नाहिद जी के गाने के बारे में बात कर रही हैं। और रविंद्र गोरखपुरी जी लिखते हैं कि बहुत ही मस्त मस्त मस्त गाना चल रहा है। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन सर जी हमारी फरमाइश को प्ले करने के लिए, दोस्तों को भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। बीटू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन सुपरहिट पसंद चल रही है। और अमीना खान जी लिखते हैं कि लाजवाब लाजवाब, आज के सभी गाने एक से बढ़कर एक चल रहे हैं। ओके जी, और ओके, और यहाँ पे मीना जी लिखते हैं कि वाह वाह वाह बहुत ही शानदार गाना, मजा आ गया सुन के। नाजिन जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन सर जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। और कुंता जी लिखते हैं कि शानदार पसंद है नाजिन जी, थैंक यू सो मच। उसके बाद का जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ ये है, यानी कि सुनील कुमार जी का, सुनील कुमार जी इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक और नहीं चिल्ली से लाजवाब फरमाइश नाजिम जी की बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और ये फीडबैक सुनते हैं।
1: अमन सर जी, अब तक चले फरमाइश में जैसे कि अभी फरमाइश चली है हमारे नई दंसारी जी इनकी, इनके फरमाइश के पहले प्रियंका जी और नीलेश विरोकार जी, इन दोनों की आपने मृजुल फरमाइश चलाई सर। उनके पहले शाहिद अंसारी जी, प्रिंस पासवान जी, अनिल कश्यप जी, प्रमोद कुमार जी, सुनीता गोप जी, सर्वजीत शेट्टी जी, अजय कुश जी, अमीना खान जी, एमडी मोहम्मद रजा जी, और उनके पहले एक भोजपुरी गीत चला सर, उस फरमाइशकर्ता का नाम नहीं सुन पाए थे। उनके पहले आरती तिवारी जी और आरिफ सिद्दीकी जी, इन दोनों की आपने मिलजुल फरमाइश चलाई सर। उनके पहले ज्योति घटपटे जी, हमारे मित्र दत्ता कदम जी, उनके पहले अनिल मेहता जी और रविंद्र गौरवपुरी जी, इन दोनों की आपने मिलजुल फरमाइश चलाई सर। उनके पहले जितेंद्र सिंह जी, अभिषेक तिवारी जी, आर जे सोनी जी, संजय सहानी जी और बिट्टू कुमार जी, इतने श्रोताओं की आपने मिलजुल बैक टू बैक फरमाइश चलाई सर। मज़ा आ गया आज का कार्यक्रम, आप सुपर और सुपर से ऊपर सजा रहे हो। आज का जो थीम चॉइस कार्यक्रम चल रहा है सर, मज़ा आ रहा है, बढ़िया है, और आपकी प्रस्तुतिकरण एकदम अनोखे अंदाज में हो रहा है। मैं जाकिर जी को धन्यवाद बोलना चाहूँगा इतनी अच्छी थीम देने के लिए। आज हम पूरी तरह गीतों की बारिश में भीग चुके हैं सर, मानो सर्दी से हो रही है ऐसा लगता है। इतने अच्छे आपने गीत चलाए सर। मैं फुले भक्त संजू भाऊ, रेडियो स्टार जो दीवाना बना दे अमन जी के साथ, थैंक यू।
0: ओके, और तो जो वो भोजपुरी गाना प्ले हुआ था, यानी बिना मौसम के बदरा बरस गए ले हो, वो था यदि काजल झक्का जी के पसंद। जितेंद्र जी लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग, और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि बरसात की भींगी रातों में ये फिर कोई सुहानी याद आई, और कुछ अपना जमाना याद आया तो कुछ उनकी जवानी याद आई। अच्छा जी, रविंद्र गौरवपुरी जी लिखते हैं कि एवरग्रीन सॉन्ग सुनकर मजा आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस कारण लिखते हैं कि जी बिल्कुल आपने सही कहा, मैसेज टाइप करते वक्त रेडियो स्टॉप हो जाता है। आप ये नहीं कि कहाँ से सुन रही हैं, जरा ये मुझे एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया है ऐसा तो है नहीं, क्योंकि आप मैसेज टाइप कीजिएगा तो रेडियो स्टॉप तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप एप्लीकेशन से सुन रही हैं तो मुझे बताइए, या अगर आप अगर वेबसाइट से सुन रही हैं वो भी मुझे बताइए, ताकि मैं उसका प्रॉब्लम का सेट आउट में कर सकूं। बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि औसम सॉन्ग सुनकर मजा गया। इसी बात पर अगला जो डिमांड है मीना इब्राहिम जी का है, मीना इब्राहिम जी यूएस से इस गाने को सुनना चाहती हैं, सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहती हैं। इंजॉय कीजिए मीना जी।

और इसी बात पर मैं दो दोस्तों के गाने प्ले करने वाला हूँ, लेकिन फीडबैक है मीना जी लिखते हैं कि बहुत बहुत ही शानदार, और थैंक यू सो मच आपने मेरा रिक्वेस्ट को प्ले कर दिया। मीना जी लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए, और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब फरमाइश चल रही है, थैंक यू सो मच। और मिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है और मैं प्ले करने वाले दो दोस्तों की, एक आरजे वंशिका जी की और मीना कुमारी जी की। तो मीना कुमारी जी और आरजे वंशिका जी, इंजॉय कीजिए अपने गाने को, कि तुम्हें बारिश यानी बारिश में तुम, ये वाला गाना।

0: बिल्कुल तुमको बारिश पसंद है और मुझको बारिश में तुम। और यहाँ पे प्रमोद जी लिखते हैं कि आरजे वंशिका जी और अमीना कुमारी जी के पसंद मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। और नाहिद जी लिखते हैं वेरी नाइस, ये डिमांड है यानी मीना जी की। और मीना कुमारी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया। और अमीना खान जी लिखते हैं कि लाजवाब गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और मीना जी लिखते हैं वाह ये गाना मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। और ये फीडबैक भी लेते हैं,
1: तुमको बारिश पसंद है मुझको बारिश में तुम, सुपर लाजवाब सॉन्ग वंशिका जी का और बहुत ही अच्छा लाजवाब सॉन्ग।
0: ओके और अगला जो गाने की डिमांड है हमारे मोहम्मद यानी के ताजिम जी का, और ताजिम जी सुनना चाहते हैं बारिश बन जाना, बिल्कुल। और ये गाना मुझे बहुत पसंद है, एंजॉय कीजिए मोहम्मद ताजिम जी।

वेलकम बैक अकुंता जी। लिखते कि मीना इब्राहिम जी, अर्जय वंशिका जी और मीना कुमारी जी, आप सभी की पसंद सुपर लाजवाब, थैंक यू सो मच। और अर्जय वंशिका जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और बीटू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद है, थैंक यू सो मच। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि मेरी जिंदगी में रौनक की वजह तुम हो, मेरे ख्वाब में परियों की जगह तुम हो, जिस आईने में खुद को रोज तुम संवारती हो, उस आईने की खूबसूरती की वजह तुम हो, बिल्कुल। और नंदनी मालिक जी के सभी गाने आज के ब्यूटीफुल है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो है क्या नाम, अनिशा सिंधी जी का है। अनिशा सिंधी जी सुनना चाहती है मिलन अभी आधा अधूरा है। अच्छा जी, सच में मिलन अभी आधा अधूरा है, बिल्कुल अधूरा है।

0: बिल्कुल, मिलन अभी आधा अधूरा ही तो हुआ है, वैसे फीडबैक भी आया हुआ है। और मीना जी लिखते हैं कि वाह क्या बात है, क्या सॉन्ग है। और फुलेबा संजय भाव जी क्या कहते हैं?
1: अमन सर जी, चुलबुली आवाज को मिलेगा मेरी छोटी और प्यारे बहन आर्जवन शिका जी और मीना कुमारी जी, इन दोनों की मिलजुल फरमाइश सुपर और सुपर सुपर। और उनके पहले आपने मेरी बहन मीना इब्राहिम जी, सुनील कुमार जी और हमारे मित्र एम डी नाजिम जी, इनकी फरमाइश चलाई सर। बैक टू बैक गीतों का खजाना, मज़ा आ गया सर। सभी को शुक्रिया इतना अच्छा गीत सुनवाने के लिए। और अमन सर जी, आप वोटिंग के बारे में श्रोताओं को अपील कीजिए ताकि हॉट स्टार पर और एक सर्टिफिकेट मिल जाए, ताकि मजा आए सर। थैंक यू।
0: बिल्कुल, लेकिन अब दोस्त वोट जिनको देना था वोट दे चुके होंगे मेरे ख्याल से, और जो लोग नहीं दिए हैं तो प्लीज अपना वोट जरूर दें, कि ताकि आपका एक वोट हमें अवार्ड दिला सकता है। इसलिए आपका एक वोट बहुत ही जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच मीना जी, लिखते हैं कि वाह क्या गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है। थैंक यू सो मच विवाह मूवी का ये बहुत ही प्यारा नगमा। गजानंद जी लिखते हैं कि कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें हैं बाकी, मिलन अभी आधा अधूरा है। जी बिल्कुल अधूरा है। ज्योति जी लिखते हैं कि विवाह का और अर्जवंशिका जी का गाना बहुत ही सुपर हिट लाजवाब लगा है, थैंक यू सो मच। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही लाजवाब। और रविंद्र गोरखपुरी जी लिखते हैं कि रोमांटिक सॉन्ग सुनकर दिल खुश हो गया है। और ओके जी, और यहाँ पे नाहिद जी लिखते हैं कि ये मिलन अभी आधा अधूरा है, गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है, थैंक यू सो मच। और एमडी राजा जी लिखते हैं, अरे भाई आपका गाना बहुत पहले का बज चुका है, कहाँ थे, कहाँ गायब थे। अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि मिलन अभी आधा अधूरा है, हो सकता है हॉट स्टार पर रिक्वेस्ट भेजे तो जरूर, हो सकता है पूरा जी। अच्छा जी, और जी हमें बारिश भी पसंद है, हमें सावन भी पसंद है, बरसात भी पसंद है, हमें ठंडा भी पसंद है और गर्मी भी पसंद है। गर्मी इसलिए क्योंकि आराम से इसी का आनंद लेते रहिए। वैसे फिलहाल अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ, और ये पसंद है, मैं बता दूं कि नहीं, कहाँ गया जी, ये हमारे हुकुम चंद जांगिड़ जी का है। हुकुम चंद जांगिड़ जी, इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: ओके जी, और मैं बता दूं कि यहाँ पे सर्वज भगत जी क्या कहते हैं,
1: अरजय अमन सर जी, रूपचंद जांगर जी अपने गाने में शामिल किए हैं, सभी भाई और सभी बहन अपने अपने गाने में शामिल किए हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं।
0: थैंक यू सर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद देते हैं आपको भी। और यहाँ पे प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि बैक टू बैक सभी गाने लाजवाब चल रहे हैं, और गजानंद जी लिखते हैं हुकुम चंद जी का के पसंद मुझे बहुत पसंद आया है, और मीना जी लिखते हैं वाओ वाओ बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत लाजवाब, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और रूपचंद गोयल जी लिखते हैं कि हुकुम चंद जी का गाना मुझे बहुत ही पसंद आया है, थैंक यू सो मच। और अमीना जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग, बहुत अच्छा लग रहा है ये गाना भी। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि यानी कि किस टाइप का वोट करना है। जी मैं बता दूं कि ये भिलाई छत्तीसगढ़ में 20 अगस्त को एक यानी कि सेमिनार होने वाला है, और वहाँ पे वो मतलब जो भी यानी कि बेस्ट आरजे होते हैं या बेस्ट यानी लिस्टर होते हैं या बेस्ट यानी कि चैनल होता है उनको यानी वहाँ पे सम्मानित किया जाता है, उनको सम्मान मिलता है, उनको अवार्ड मिलता है। तो इसके लिए वोटिंग चालू है, एक यानी जुलाई से 31 जुलाई तक वोटिंग हो रहा है, और आपका एक वोट बहुत कीमती है, तो प्लीज अपना वोट जरूर दें। और कैसे वोट करना है वो मैं आपको बाद में भेज दूंगा कि ऐसे ऐसे वोट किया जाता है, इस नंबर पर किया जाता है, वो एक अलग बात है। जो भी वोट करना चाहते हैं तो वो प्लीज एक बार मुझे मैसेज जरूर करें कि ताकि आपका एक वोट मेरे लिए बहुत कीमती है। ओके, एमडी क्या नाम है, एमडी रजा जी लिखते हैं कि जी हमारा गाना बजाने के लिए धन्यवाद देते हैं। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना है। ओके जी, अगली पसंद जो मैं सुनवाने वाला हूँ वो ये है एस खानम जी, और एस खानम जी ये सुनना चाहती हैं साधना संगम की आवाज में ठहरे हुए पानी में। इंजॉय कीजिए।

क्या बात, और मैं फीमेल वॉइस में पहली बार सुनता हूँ। मैं तो हमेशा यानी कुमार सानू की आवाज में सुनता था इस गाने को, लेकिन आज पहली बार मैं सुन रहा हूँ साधना सरम की आवाज में, वो भी आपके चलते इस खाना।

0: बिल्कुल ठहरे हुए पानी में कंकड़ ना मार सोनी है। और मतलब क्या ही बताए, कितना गाना हार्ट टचिंग सॉन्ग है, दिल को छूने वाला गाना है। और अभी मार्जी लिखते कि बहुत ही सुपर बोले तो यानी कि ललन टॉप वाला गाना। और थैंक यू सो मच इस गाने के लिए, मजा आ गया सुन के। और यहाँ पे नाहिद जी लिखते हैं कि वाओ क्या पसंद है, सुपर पसंद, ब्यूटीफुल पसंद, अमेजिंग पसंद के लिए थैंक यू सो मच एस खानम जी। और यहाँ पे प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि वो मेरा फेवरेट गाना है, थैंक यू सो मच इसे सुनवाने के लिए एस खानम जी। और यहाँ पे हुकुम चंद जी लिखते हैं कि अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और गाना मेरा प्ले करने के लिए। और वोट कैसे करना जी, मैं आपको यानी कि व्हाट्सएप करूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पर बता दूंगा कि कैसे वोट करना है। और ये क्या कहते हैं, ये सुनते हैं।
1: ठहरे हुए पानी में अच्छा। कंकर न मार सावरे जाएगी। अमन सर जी ये गीत सुपर से ऊपर लगा, मजा आ गया। रूपचंद गोयल बाड़मेर राजस्थान।
0: बिल्कुल। और यहाँ पे मीना जी लिखते हैं वाओ क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही शानदार नगमा, दिल खुश कर दिया। बिट्टू कुमार लिखते हैं जी बहुत ही बेहतरीन गाना है और आप सही कह रहे हैं, मैं भी पहली बार फीमेल में सुन रहा हूँ। और यहाँ पे अनिल कश्यप जी लिखते हैं गुड चॉइस, बिल्कुल। और रविंद्र गोरखपुर जी लिखते हैं कि अमन सर जी जी मैं आपको वोट करना चाहता हूँ जी, तो आप मुझे मेरे इन व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा कि कैसे वोट करना है। थैंक यू सो मच आप सभी के सपोर्ट के लिए। गजानंद जी लिखते हैं कि ठहरे हुए पानी में कंकड़ ना मार सोनिए, बहुत ही ये गाना प्यारा लगा साधना सरगम की आवाज में, थैंक यू सो मच एस खानम जी। और यहाँ पे रवि मोहन जी लिखते हैं कि बेहतरीन मनपसंद के लिए ठहरे हुए पानी में मजेदार गाना सुनने को मिला, धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो मैं सुनाना चाहूंगा कुंता बेनर्जी का। कुंता बेनर्जी एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

और एक चीज का और मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा आप सभी को, यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी स्टार सिंगर आइडल का सीजन 2, और इसमें आप यानी गाइए, गुनगुनाइए और इनाम भी जीतिए। जी बिल्कुल, जो यानी कि फर्स्ट प्राइज होगा वो 10,000 का होगा, और सेकंड प्राइज करीब 7,000 का होगा, और यानी कि थर्ड प्राइज यानी 5,000 का होगा, और उसमें आप गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन होगा और अगस्त से स्टार्ट होगा वो प्रोग्राम, बहुत जल्दी आने वाला है।

और स्टार स्टार इन सिंगर आइडल के जो स्पॉन्सर है वो हमारे एमडी महमूद आलम जी, वो सऊदी अरब रियाद वाले ही है जिन्होंने यानी सीजन 1 को कंप्लीट करवाया था और सभी को इनाम भी दिया था उन्होंने।

बिल्कुल जैसा भी हो अच्छा ही होगा। इस कानन जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और एक फीमेल की दिल की आवाज है और जिन्होंने फीडबैक दिया है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद है। ओके जी, थैंक यू सो मच आपका भी। और नाहि जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है, ब्यूटीफुल सॉन्ग है, थैंक यू सो मच कुंता बेनी जी। गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय कुंता बेनी जी के पसंद मुझे बहुत ही पसंद है, मजा आ गया सुनकर इस गाने को। और नाजिम जी लिखते हैं कि औसत सॉन्ग के लिए धन्यवाद देते हैं कुंता बेनी जी को। प्रमोद जी लिखते हैं कुंता बेनी जी के पसंद सुपर डुपर हिट लगी है। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत बहुत बहुत ही शानदार गाना है। और अच्छा ओके, कोई बात नहीं, ओके ओके ओके। और कुंता जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन जी, आपने मेरी फरमाइश को भी प्ले कर दिया, थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वह यानी संदीप सुतार जी का है, तो संदीप सुतार जी एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: दुनिया देखी चल
1: बैठ। वेलकम बैक। और मीना जी लिखते वाह क्या शानदार गाना है। बिल्कुल। और यहाँ पे अनिल कश्यप जी लिखते ये इश्क मोहब्बत और प्रेम से यानी कि पूर्ण प्रोग्राम चल रहा है, एकदम मूड ही बदल जाता है सुनकर। ओके थैंक यू सो मच। और फुले भाग संजू भाव जी लिखते अमन जी बेस्ट रिपोर्टिंग करता के लिए जी बिल्कुल आपका नाम जाता है, मैं हर किसी को बताता हूँ, टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल अगला जो डिमांड है वो कपूर चंद जी का है और कपूर चंद जी सुनना चाहते हैं फिल्म यानी कि पनाह का वो लाजवाब गाना। इंजॉय कीजिए कपूर चंद जी अपने गाने को।

वेलकम बैक। और मेरे पास फीडबैक बहुत सारे आए हुए हैं, लेकिन मैं फिलहाल फीडबैक को शायरी में रखते हुए अगले गाने की तरफ बढ़ता हूँ बिना देर के, क्योंकि समय कम है और फरमाइशों की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन अगला जो डिमांड है वो मैं सुनवाना चाहूंगा किस दोस्त का, MD जलील जी का, यानी कि मैंने सावन को कहा ओके जी तो इंजॉय कीजिए MD जलील जी। ओ, इनका गाना डाउनलोड नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, मैं इनके गाने को बाद में प्ले करूंगा। अगला जो गाना है वो यानी कि पूजा भास्कर जी, इंजॉय कीजिए।

टॉप यानी यहाँ पे लिस्नर है उनका नाम मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट में है अमीना खान जी, एंड सेकंड में बिट्टू कुमार जी, थर्ड में अनिल कश्यप जी, फोर्थ में है यानी कि प्रमोद कुमार जी, एंड फिफ्थ में नाहिद अंसारी जी, उसके बाद सिक्स्थ में मीना इब्राहिम जी, एंड सेवेंथ में है जितेंद्र सिंह जी, और उनके बाद एट में है यहाँ पे कुंता बेनर्जी, और नौ में है नाम है एस खानम जी, और टेन में है मोहन नेवारे जी। तो मैं लॉटरी निकालता हूँ अभी।

0: वेलकम बैक। और यहाँ पे नाजिम जी लेते वाव ऑसम सॉन्ग है सुनने को मिला है। गजानन जी लेते हैं थोड़ा मटके से पानी वाला भी गाना मुझे अच्छा लगा, और पूजा भास्कर जी का भी गाना बहुत पसंद आया। मीना जी लेते हैं वाह क्या बात है, क्या पसंद है पूजा भास्कर जी का, थैंक यू सो मच। और ये फीडबैक क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: नैनों में बदरा छाए

0: बहुत ही शानदार गाना था ये।
1: ओके जी, तो इसी बात पे मैं बता दूं कि आज के विनर हुए हैं बिट्टू कुमार जी। बिट्टू कुमार जी को मैं आपको कॉल लगाऊंगा थोड़ी देर में, टेंशन मत लीजिएगा, और हो सके तो जरूर अटेंड कीजिएगा कॉल। लेकिन आपका मैसेज आया हुआ कि आपका डाटा खत्म हो गया है, लेकिन मैं फिर भी एक बार कोशिश करूंगा। कोई बात नहीं, अगला जो डिमांड है, जैसे कि MD जलील जी का जो गाना था वो नहीं प्ले हुआ था, मैं प्ले कर रहा हूँ पहले।

0: भाई बिट्टू जी बहुत बहुत बधाई हो आज के विनर बनने के लिए टॉप लीडर बोर्ड में।
1: नमस्कार।
0: कैसे हैं जी बिट्टू जी?
1: बिल्कुल सही है सर।
0: तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे बताइए? आज बहुत
1: मेहनत किया गाना हमको जी। गाना तो याद नहीं सर, आप अपने पसंद से सुना दीजिए।
0: मैं अपने पसंद से? ओहो
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अपने पसंद से कौन सा गाना सुना दूं?
1: आप जो है सर जी, मेरा डाटा तो खत्म हो गया, पोस्ट कार्ड तो सुना ही पड़ेगा हमको।
0: वो कोई बात नहीं, लेकिन जो गाना बोलेगा मैं सुना दूंगा, टेंशन मत लीजिए।
1: नहीं, आप अपने पसंद सुना दिए सर जी।
0: अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ अपने पसंद से गाना सुनवाने के लिए।

अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि मुकाबला तो भी जोरदार था लेकिन पर्दाजी बिट्टू को मुझे मार ले गए हैं और बहुत बहुत उनको बधाई हो। बिल्कुल और ओके थैंक यू सो मच। और यहाँ पे कुंता बेन जी लिखते हैं कि शानदार फरमाइश के लिए थैंक यू सो मच। इसी बात का अगला जो डिमांड है हमारे सुभाष तिवारी जी का और संध्या पटेल जी का है और ये डिमांड है ये पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। इंजॉय कीजिए दोनों दोस्त।

0: ओके और ये फीडबैक पहले शामिल कर ही लेता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं यानी कुत्ता बिनी जी का गाना बहुत ही शानदार लगा सभी, और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: क्या बात है, क्या बात है, इसीलिए मेरा नंबर कभी लगता है अंतराक्षरी में। तो मैं कहता हूँ सर जी आपकी पसंद से गाना सुनवा दीजिए, आप माहौल के हिसाब से बहुत सही गाना सुनाते हो।
0: अच्छा
1: मजा आ गया इस सॉन्ग में मेरी।

0: बहुत ही सुपर अमन सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यारा सुपर हिट सॉन्ग सुनाने के लिए। मैं रवि मोहाड़े बैतूल से।
1: ओके, धन्यवाद देते हैं आपको। भीगे हुए और जो आखिरी गाना है वो मैं प्ले करके जा रहा हूँ, यानी कि शिवम जी का। तो भाई इंजॉय कीजिए शिवम जी इस गाने को, और मुझे इसी गाने के साथ दीजिए प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। मैं मिलता हूँ फिर कल शाम 6:30 बजे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और प्लीज सुनते रहे रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना रहे। ओके।

0: गारे गारे
1: गारा बड़ा जी
0: गारे गारे
1: ये सूर बदल
0: ओ गारे गारे
1: ये आम को बटका
0: गारे गारे
1: ये सूर की तरह जी ये सूर ये इन्ना आया है तो

0: ये घोड़ा चतुरा घोड़ा ये क्या रहा घोड़ा चतुरा घोड़ा चतुरा एक पे रहना या घोड़ा बोला या चतुर बोला गा
1: एक चतुर नार करके सिंगार
2: एक चतुर नार बड़ी होशियार
1: मेरे मन के द्वार ये घुसत जात
2: अपने ही जाल में फंसत जात
1: हम मर

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

हस के साडे नाल अरे साथ खड़े हम दोनों लगते हैं सोनी महिवाल। लड़की हसीन हो।

0: अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो?
1: हंस नहीं रहे दोस्त, रो रहे हैं तुम्हारी अकल पे और हम सबकी बेखूबी पर। एक दीवाने ने ख्वाब देखा जंगल में और उसकी तस्दीक के लिए हम सब दीवाने तुम्हारे दरबार में पहुंच गए।
0: ये दीवानगी नहीं, हकीकत है। मैंने अपनी आंखों से उन दो इंसानों को सांप बनते हुए देखा है। विजय, पहले तो तुम्हारी सिर्फ दिमाग पे शक था, अब मालूम होता है कि तुम्हारी आंखें भी जा रही हैं।
2: हम ये कैसे मान सकते हैं यार कि एक सांप जब चाहे इंसान का रूप धारण कर ले और जब जी में आए फिर से सांप बन जाए।
3: मैं तो कहता हूँ ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है और कुछ नहीं।
1: मुझे तो सोचकर भी हंसी आती है यार।
0: चंद साल पहले तुम्हारे जैसे लोग चांद पर जाने वालों पर ऐसे ही ऐसा करते थे।
4: ओ फिलोसोफर साहब, आप अपनी फिलॉसफी से सच को झूठ में नहीं बदल सकते।
0: अरे भाई, ये इच्छाधारी सांप सदियों से है और जो बात सदियों से सच है वो आज भी सच है, समझे?

0: गोली किसने चलाई?
1: मैंने।
0: क्यों?
1: अगर मैं गोली नहीं चलाता तो नाग उस लड़की को डस लेता।
0: वो लड़की नहीं है बेवकूफ, वो नागिन है, और जिस नाग पर तुमने गोली चलाई है उसे मैं इंसान के रूप में देख चुका हूँ, उससे बातें कर चुका हूँ।
2: लेकिन अब क्या करूँ, पिस्तौल से निकली हुई गोली वापस तो नहीं आ सकती?
0: जिस तरह पिस्तौल की गोली वापस नहीं आ सकती, इसी तरह नागिन का बदला कभी टल नहीं सकता। कहते हैं मरने वाले नाग की आंख में मारने वाले की तस्वीर रह जाती है, और नागिन उस वक्त तक चैन से नहीं बैठती जब तक वो खून का बदला न चुका ले।
3: तो अब क्या किया जाए?
0: किरण के बचने की सिर्फ एक ही सूरत है, हमें फौरन उस नाग को ढूंढ के जमीन में दबा देना चाहिए ताकि वो नागिन अपने नाग की आंख में इसकी तस्वीर न देख सके।
3: लेट्स सर्च।
0: हाँ चलो।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: ये कमबख्त याद ही तो तबाह कर देती है डॉक्टर साहब। उस गली से गुजर हुआ नहीं कि पलटना मुश्किल हो जाता।
1: फिर तो जरूर कोई ऐसी याद होगी जिसका वास्ता आपके दिल से होगा।